थो रेडियो नेपाल ख नेपाल बासे समाचार जी उपेश मर्जन पाखी निना दिस थौ नेपाल समत चिन्स सव पी खुद कौला थो पारो नेपामी तेगु तलहङ्गु नख मोहनी थौनी से न्यागुदो चिनियङ्क तजिक हनिगुदो नख या नापाङ्गुनी थौ सुथे नलसवा पिगुदो छे सुचुपिचु याना मोल हुया विधि नक्सा नलसवा पिगु चलन्दो बिं हगु चा व खुसी हगु फी लक्षेना छो तछौ कनि होलीगु परम्परा दो थौ पिगु नलसवा स्याको ट्याको अर्थात् महानवी व चाल अर्थात् विजय दशमी खुनु स्वाय रूप छेने छुइगु चलन्दु नलस्वा शक्ति आद्य दुर्गा भवानी या त अतिक योगुली चाल खुनु मोहनी सिनतिना मासुगु नलस्वा तिगु चलन्दुगु धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम धैदिगु ख नलस्वा पित सायद सोइपिन्त सुतेसिया चिन्सता इजुया पी नेगु मिनेटे दु थौनिसे निपतिक शक्तिपीठे पूजा यागु चलन्दु मोहनी नखाए नापाङ नि ये हनुमान ढोका दरबारे मोहनी छे साइटे नलसुवा पिगु हनुमान ढोका दरबार हेर्चा अड्डा या प्रमुख जयन्ती श्रेष्ठ प्रधान थैदिगु दु लजगा आखा बुवपी ओ मेमेगु ज्या छे पिने उना चोपी मोहनी नखले छे लिहा वेगु चलन्दु अथे जुगुली थुसी सोनिगल च्यागु लाख मनु त पिहा उनीगु तुकमा यागुदो उखे मिथिला लागे मोहनी नख या त दशहरा धाई अन थौनिसे भजन हालिगु चलन्दु थोया दथी नेपाल प्रहरिया प्रहरी मानिरक्षक दानबहादुर खार्की मोहनी व सन्तीले विशेष सुरक्षा वित प्रहरी कर्मचारी पिन्त उज पियादिगु दु नेपाल सम्बत नुद संरक्षण समाज व नेपाल सम्बत नुद राष्ट्रिय समारोह समिति गोशालय पूर्व नायपिन्त ए महानगरपालिका कार्यवाहक नाय सुनिता डङ्गोल हनादिगुदु नुद राष्ट्रिय समारोह समिति या नाय सह प्राध्यापक प्रेम हिरा तुलाधर या नायसी नेपाल सम्बत नुद राष्ट्रिय समारोह समिति या नाय प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर प्राध्यापक डाक्टर चुन्दा ब्रचाचार्य डाक्टर सुमित्रा डङ्गोल गुरुङ ओ कानुन व्यवसायी सत्य भाबा माथेबी पिन्त मेयर सुन्ता डङ्गल दोस्रोलाई न्यायका हनापौ लल हान्दीको ख नेपाल भाषा साहित्य इतिहास या त लुमकुसे विगते अग्रज पिन्स यनादीको भाषिक साहित्यिक आन्दोलन या त मेयर डङ्गोल हाक्न लुमका दिको ख नेपाल सम्बत 1113 सँग निसङ्गु समिति वेकपिनुको भाषिक शैक्षिक साहित्यिक सांस्कृतिक योगदान या त मूल्याङ्कन याना बहुदल व्यवस्थापिका थौ सम्मानित ज्यादिपी व्यक्तिपी प्रत्येक सोधे छको मिसा नाय देखेको प्रार्थन कथा हे वेकपिन त नाय लिएको ज्या निहाको ख नुग खतेको चोले वङ्गु श्री न्यादतक पद्मकन्या क्याम्पस शिक्षण पेसा नाप न्यादतक नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग प्रमुख ज्या चुनादीम प्राध्यापक तुलाधर नेपाल सम्बत छगुहे जग देय नाम दुगु सम्बत ख धायादिल अथे नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत व सङ्गतर साखुवात राष्ट्रिय विभूति घोषणा या फुगु धैगु हे नेपाल भाषा आन्दोलन या उपलब्धि जुगु नेपाल भाषा एकाडेमी चान्सलर मल्लके सुन्दर कनादिल अथे प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान ब्रजाचार्य पिन्तुना नोचुया नाप्नप वैगु माग एकते सम्यक महादानेपति क्यात न सकुसित इनाप यनादिल श्री हलचोकका आकाश भैरवा क्षमा पूजा तजिक हङ्गुदो यहाँ पुनिलिसे थिति सचितले आकाश भैरव्या जात्रा क्याङ्गुदो दम्पतिक यहाँ पुनिया नीति योसी थनितुङका हलचोकका आकाश भैरव्या जात्रा केने गुजुई श्री हलचोक आकाश भैरव गुठिया नाय शेरबहादुर पुतुवार या कथ क्षमा पूजा सङ्घीय मन्त्री सांसद मेयर पिनाप नेस मल्याका भक्तजनपिन्स प्रसाद ग्रहण यनादिगु दु यल या मे कथ जे यल दे या प्रिमियर सो मङ्गलबार जारे मिग जुगुदो निस व खुइ न्याम गायक पिन्स हालादिगु थोमे खुइ म कलाकार पिन्स अभिनय यागु यल महानगर या सोह्र वडा या अध्यक्ष निलमर कुमार साक्ये दाइदिगु ख ज्याजोले ख्याल तुकुचा चुकु न यहु ख उत्तरी गोर्खा जुया न्यायगु बुढी गण्डकी खुसी सुथे निसे खुसी बा ओ गुदु चुम्बुम्ब्री गाउँपालिका पूर्व नोकु कुमारी गुरुङ या कथ बुढी गण्डक या स्यार खोला खुसीबा ओ गुख जिल्ला प्रहरी ज्याकु गोर्खा या प्रहरी निरीक्षक आकाश क्विकेला जगत सल्लेरी सिर्दिवास
खोला बिर्सी माछा खोला सोती आर्खेत व आर्घाटिया बासिन्दा पिन्त सुरुचिक लागे वनी त इनाप यानादिगुदु बिपी राजमार्गे दुगु चा ना चिके धुङ्का हाक्न न्यागुदो काभ्रिया रोसी गाउँपालिका पिन्थली बेसी लिक चलकुटुना चा ओ ना दुगुली याता ध्याके मुफुगु ख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शिक्षा प्रणाली भिङ्केमा धैदिगुदो पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय या चेको गु बुदिया लसत मिग जुगु च्याजले वेक्न थते धैदिगु ख विज्ञान प्रविधि व कृत्रिम बौद्धिकता या त विकास नप शिक्षा प्रणाली ह्युपा वया चुङ्गुली अज्यागु हे शिक्षा चुलाकेमा धैदिगु ख परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल फिजी ओ टुबालुई गोसागोगु प्रिकोप लिडर्स इभेन्ट ओ अस्ट्रेलिया औपचारिक भ्रमण कोचाका नेपाली हाँ झादिगुदो प्रमनिया झोले अस्ट्रेलियन नेपाया नीति राहत ओ पुनर्निर्माण नीति चिन्यागु मिलियन अस्ट्रेलियन डलर अनुदान ग्वाली यागु धागुदो खुसीबा विपद प्रतिकार नीति अस्ट्रेलिया घोषणा यागु ग्वाली निकुगु मिलियन अस्ट्रेलियन डलर थेङ्गु मन्त्री खनाल थाइदिगुदु नेपाली काङ्ग्रेस नुम सभापति गगन कुमार थापा काङ्ग्रेस त नुदा यागु थाइदिगुदु सानेप्या जुगु ज्याजले वेक्ल इल थत थोपदे फाला ल लागु नेतना दिल सभापति थापा नागरिकको काङ्ग्रेस दथुया स्वप या त बलाकेगु नेतना दिल नेपाली काङ्ग्रेस चिन्याको गु त मुज्याको त उपसभापति व महामन्त्री पद या भोट ल्या खाएको ज्या जुया चुङ्गुदु निर्वाचन समितिया कथन सभापति स गगन कुमार थापा गुइपेङ्गु प्रतिशत मत हया त्याका दि थङ्कुगुदु धासा वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा ओ मिसा उपसभापति स पुष्प भूषाल निर्विरोध त्याना दि थङ्कुगुदु भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय महाथात्या निकाले छेला तगु सफ्टवेयर व हार्डवेयर न्याना छेलाबुला यागु अध्ययन समिति निसङ्गुदो मन्त्रालय नापी विभाग व भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभाग छेला तगु नेलिस व जिगु किता व्यवस्थापनीय नीति न्यागु हार्डवेयर व सफ्टवेयर विचार या त समिति निस्नागु भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल या सचिवालय धाकु ख खुसीबा सेङ्कुगु बेसी सहर चामे खण्ड या संरचना पक्की सडकको ता देखे त छगु अर्ब धेबा मालिगु धागुदो बेसी सहर चामे तकिया सडक देखे त सोङ्गो अर्ब दुईगु दुखमा यागुदो तुकिया नीति मन्त्रालय पहु छोयागु आयोजना प्रमुख सतीश सुवेदी धाइदिगु ख ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नेवा नगरी तोखा नुम जीवित देव गणेश प्रतिष्ठापन यागुदु तोखा दे या सांस्कृतिक व महत्वपूर्ण धरोहर या कथा कया तम जीवित देव गणे दिय या उङ्गु शनिबार प्राण प्रतिष्ठा यागु ख प्राण प्रतिष्ठा लिपा तोखा नुम गणे दिय या प्रतिष्ठापन या तेङ्गु ख जीवित देव गणेश या प्राण प्रतिष्ठा लिपा नु गणे दिय या प्रतिष्ठापन जुइगु धागुदो नुम गणे दे प्रतिस्थापना जुइगु जुइव स्वापुदुगु गुठी गोसा खला व स्थानीय या त कोसना तगु थ्या व इले थेङ्ग वे त इनाप नाप यागुदु भारतीय निर्वाचन आयोग विरुद्ध इनाप यागु विरोध प्रदर्शन हने कक्रोच जनता पार्टी सिजेपी या प्रमुख नाप सोम नेता पिन्त प्रहरी जोङ्गुदो ल्यामतेगु नेतृत्व दुगु सिजेपी या कथ नु दिल्ली तक वपी त लेहे जुङ्गु प्रहरी धागुदो नाय अभिजित दिपके नाप सोम नेता पिन्त विमानहे जुङ्गु प्रहरी धागुदो विपक्षी दल व आलोचक पिन्स मतदाता ना धलय हुने लखु मतदाता पिनीको ना दुमथ्यागु व नेतृत्व याना चुङ्गु हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपा या त जगलव दैगु दोप बिगुदो थुसी आन्दोलनकारी पिन्स निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमार पद राजीनामा बिमाधका इनाप एना चुङ्गुदु
साउदी अरबिया उडेन अधिकारी पिनसँग रियाद किङ खालेद विमानस्थले यमनिया हुती विद्रोह यागो हमला लाना चिन्नी मिगुद हागुदु हुतिया डोन हमला लाना सोसौ गुम मुनुत खापा जुगुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन नाप डिजेल आपूर्ति या सम्झौता जुगो घोषणा यागो छु यी लिपा युक्रेन र जापोरोजिया लाग्या रुसी आक्रमणले लाना चिन्या म सिगुदु धासा आक्रमणले मस्त नाप सिगुदु लिपाङ्गो पिनु युक्रेनी आतक नियन्या म सी ढङ्कुगुदो ल्वापु पेन्द त्या यी पुनी थुङ्कुगु इले निगुली पछि ल्वापु यनाचुङ्गुदो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी या छगु दिवसीय मिज क्रिकेट विश्वकप लिग दुई या नेपाल थौ क्यान्डन नाप थिएन बेला या तेङ्गुदो ओमन या अल अमरात या ओमन क्रिकेट मैदान ए जुगो कासे नेपाल ल्या अपुके मागु यी वगुदु थौ हिमालय पहाडी लाग्या बच्चा मौसम हिली धासा तराई सुचुपुजी जुगु धागुदो कोशी बागमती ओ कर्णाली प्रदेश या हिमालय ओ पहाडी लाग्या मो थासे लुम्बिनी गण्डकी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश या हिमालय ओ पहाडी लाग्या छगुनीको थासे नोन्याना वावैगु तुकमा यागुदो सोनिगले चिकुलया मौसम न्यानाचुङ्गु नाप थागुदो नेपाल भाषी बुख कोचाला शुभ है।

0: संसार मगु जात्रा छङ्गुजे खोजेको ठुला मतुला जियो
1: जो नामी भाजो मे जुपी रत्न बेहोसी हो तीर्थ कुमारी सले दुगु थोमी छिसन नेना है दिल हजुर रत्न बेहोसी ध्यासा त वेक उक्नु अक्टोबर 7, 2026 कुन मधुगु ख मंगलबार वेक मन त वेक याता इक्कु इक्कु दुल्न चिम बिचाएका चनाले वेक छेन जनन धैर्य धारण या फुइगु नुग कतुके फुइगु छगु ताग चुला फेमा धैगु मनन्तु नाचना दासे फोन सत्य दिमा पासा त लस्कु स्याना सना हजुर हालो हेलो जो वे कया फोन सपुत्वा दल सायद वे क न नेवासँग खला मसमा भाजु वा मेजु जुइमा वे कटा बच्चा मसासे चुनलाई छुजुल वे कया फोन सपुदा सत्वा दल अनि नामी भाजु मेजु पेन्चिगु देशे ठाउँ सुथे खुता इल निसे बुढी गण्डकी खुसीबा तस्क खुसीबा खुसीबाला वै बर्खाबले सदा सदा तर अनचाने बामलाक खुसीबा वो गु हुने अनचङ्गु भूमि अनचङ्गु अले छे अनचङ्गु थिथि कथ यागु लजकायान नै पि मनुते तचाने युको बामलाक घालक गु दुधैगु ख त बुख पाखे अले लाइ पाखेन अन स्थानीय सरकार पाखेन छिसन जानकारी कया दिया जना दिगु दु किन छिस छुङख सुसा थो विशेष
2: धासेन थुमे छिगुनी

就你那边发出面这边啊，去那放少了，呀呀，通常你不是不看，大哈的查的查几股的呀股，管理上的抽个通都看咋股都，卡拉那送股都，库西巴瓦呀送股都，哈，朗托西那送股都，阿勒尼巴斯尔卡勒一股一股股的呀那送股都，啊，那卡萨卡伊卡一股一股嘛努的，索尼个那皮哈莫尼个伊族呀送股都，他来上头，伊他那在那几股的是库西巴，啊，早了杜比娜，你先个呀，啊，一股一股个通呀个哈天呀那几股的是一股一股卡拉那送股都。किन्थो इले सकल नेपामेपी छपछदि जुइनु खालागु थासे वास फेगु नितेसी सकसिन फको कुता यानु फको ग्वाली यानु आ धासे निनामी बाजुमे जुपिन थौ फोन्याना दिमा बनेपा नगरपालिकामा भासु तने एकैको सुबैगु फलभूमि जुया तने एकैको सुबै र राजेन्द्र नकमी जुया तने सुबै अले फोन सपु याना न फोन सपु त आदगु दु छिको बिता ने एकैको सुबै दु लिपया दिसन सप्ते दिस अले जि न्यंकागु मेचि त यलजि देगु आशा भरोसा कया छना अले गुल्न पास पेसन छिगु तिति फ्रिक्वेन्सी अनलाइन प्राविधिक पासा उत्तम पाण्डे युकेको सुबै दुध आसेन जिरु विश्वास जय मा

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। बूढ़ी गंडकी नदी में आई बाढ़ में 5 लोग लापता, 49 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। बाढ़ से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक मकानों, पुलों और अन्य भौतिक संरचनाओं को हुआ भारी नुकसान। नेपाल का प्रमुख पर्व दशहरा हुआ शुरू, पहले दिन आज घर घर में हुई घट स्थापना। पृथ्वी राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात शुरू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया रूस और यूक्रेन ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए हो गए हैं सहमत। अब समाचार विस्तार से। गोरखा जिले के उत्तरी क्षेत्र बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। बाढ़ में 100 के करीब मकान और तबेले बह गए हैं। चुमनुबरी, धारचे और आरुघाट गांव पालिकाओं के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आज सुबह करीब 4 बजे चुमनुबरी गांव पालिका 6 के तुमजे स्थित उंगीलुंग नदी में सूखा भूस्खलन आने से नदी का बहाव रुक गया था। बाद में अचानक पानी का प्रवाह खुलने से बाढ़ आई। बाढ़ में 5 लोग लापता है। वहीं फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया गया। न्याकफेदी में फंसे 9 लोगों और यारू बगर में फंसे एक विदेशी नागरिक सहित 18 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा मनासलू क्षेत्र में फंसे 90 पर्यटकों, मार्गदर्शकों और कुलियों को भी बचाया गया है। बाढ़ से 2 मोटर पुल और 4 झूला पुल बह गए हैं। इनमें आरुघाट और धादिंग के त्रिपुरा सुंदरी को जोड़ने वाला मोटर पुल और धारचे के बेली ब्रिज भी शामिल है। पुल बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और दशहरा के अवसर पर घर लौटने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। बाढ़ ने घट्टी नदी स्थित विकास आधारभूत विद्यालय के भवन को भी बहा दिया है। इसके अलावा उत्तरी गोरखा की 3 जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है, जिससे कई गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बचाव अभियान में नेपाली सेना के 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। गोरखा जिले की चुमनुबरी गांव पालिका में बूढ़ी गंडकी नदी में आई बाढ़ के बाद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र के माध्यम से समन्वय और निगरानी तेज कर दी है। मंत्रालय के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, आकस्मिक उपचार और अन्य स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निकायों को सक्रिय किया गया है। इसके लिए गंडकी प्रदेश स्वास्थ्य आपातकालीन एवं सूचना केंद्र, जिला स्वास्थ्य कार्यालय गोरखा, अस्पतालों और स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य संयोजकों को लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती और आकस्मिक उपचार सहित अन्य स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित निकायों को तैयार रहने को कहा है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी झाने ने गोरखा जिले की चुमनुबरी गांव पालिका में बूढ़ी गंडकी नदी में आई अचानक बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव, राहत और सहायता में जुटने के लिए पार्टी सदस्यों को निर्देश दिया है। उन्होंने बचाव कार्य में सक्रिय सरकारी निकायों के साथ समन्वय कर राहत और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में जुटने को कहा है। लामिछाने ने बूढ़ी गंडकी से त्रिशूली नदी के किनारे तक के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों से भी सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों को पूरी तरह पालन करने की अपील की है। गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सुबह आई बाढ़ का कारण चुमचेत के पास भूस्खलन से नदी का प्रवाह रुकने के बाद बना अस्थायी अवरोध टूटना माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र इसी मोड ने सरकारी निकायों से प्राप्त प्रारंभिक विवरणों की समीक्षा के बाद ये आशंका जताई है। इसी मोड के अनुसार आश्विन 25 की सुबह नेपाली समय अनुसार करीब 4 बजे बाढ़ शुरू हुई। बाढ़ के साथ नदी के तटीय क्षेत्रों में कीचड़, पत्थर और अन्य मलबा बह गया। पानी के स्तर में उतार चढ़ाव के बाद बूढ़ी गंडकी, त्रिशूली और नारायणी नदी प्रणाली के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया। बाढ़ से कई लोग लापता हुए हैं, मकान बह गए हैं, पुलों को नुकसान पहुंचा है और नदी किनारे के बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं। गोरखा के सल्लेरी स्थित 341 मेगावाट क्षमता वाली बूढ़ी गंडकी जलविद्युत परियोजना के क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। फिलहाल नुकसान का विस्तृत विवरण जुटाया जा रहा है। खोज एवं बचाव, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत वितरण का काम जारी है। इसी मोड़ के महानिदेशक पेमा ग्यामछो ने कहा कि रसुआ गिरोंग आपदा के कुछ समय बाद हुई इस घटना ने एक बार फिर पर्वतीय क्षेत्रों के समुदायों और नदी गलियारों में बसे लोगों के प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उच्च जोखिम को उजागर किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: फोनमा कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट नआएर दिक्क लाग्छ,
2: अब अनुभव गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम 4G भोल्टे।
1: भोल्टे भोइस ओभर LTE अब तपाईँको हरेक कुराकानी अझ स्पष्ट अझै जीवन्त।
2: एचडी भोइस क्वालिटी सँग कम ब्याकग्राउन्ड नोइज र अल्ट्रा क्लियर आवाज।
1: यस्तो अनुभव मानौ तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईँको छेउमै हुनुहुन्छ।
2: र अझ रमाइलो कुरा,
1: फोनमा कुरा गर्दै गर्दा पनि चलाइरहनुहोस् 4G स्पिड इन्टरनेट,
2: क्लियर कॉल्स र फास्ट इन्टरनेट एकै साथ।
1: सेवा सुचारु गर्न आफ्नो फोनमा *444 हैश डायल गर्नुहोस्। 4G बोल्टे
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। धादिङ जिले की गजरी गाउँपालिका 5 स्थित गलौदी में नदी के कटाव से सड़क धंसने के कारण अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग पर आज दोपहर से दोतरफा यातायात शुरू हो गया है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज दोपहर 3:10 से वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। धंसी हुई सड़क के ऊपरी हिस्से की कटाई कर यातायात बहाल किया गया। शुक्रवार शाम सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा दरक गया था, जबकि 20 मीटर सड़क धंस गई थी। इसके कारण राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी और दशहरा के लिए घर जा रहे यात्रियों को परेशानी हुई थी। नवरात्र के पहले दिन आज नेपाल में घर घर में घट स्थापना कर जयंती के लिए जौ बोए गए। इस अवसर पर मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का आह्वान कर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती का स्वरूप है। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों में उनका पहला स्थान है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल और माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है। नंदी बैल उनकी सवारी हैं। उन्हें सती, पार्वती, हेमवती और भवानी जैसे नामों से भी जाना जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के लिए नए राष्ट्रपति की मांग करने के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा क्षेत्र में युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ये घोषणा की। उन्होंने दोनों पक्षों से युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करने का आग्रह किया, हालांकि समझौते की स्वतंत्र पुष्टि का विवरण उपलब्ध नहीं है। इससे पहले बीबीसी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 महीने के पूर्ण युद्ध विराम की मांग करने का आग्रह किया था। जेलेंस्की ने कहा कि यदि उन्हें 60 दिनों का पूर्ण युद्ध विराम मिलता है तो यूक्रेन में चुनाव कराए जा सकते हैं। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों को लेकर नई चेतावनी जारी की है। हुती सैन्य प्रवक्ता याहिया सरी ने कहा है कि मक्का और मदीना को छोड़कर सऊदी अरब के सभी हवाई अड्डे उनके सैन्य अभियानों के दायरे में हैं। उन्होंने यात्रियों से सऊदी अरब के हवाई अड्डों से यात्रा न करने की अपील की है। ये चेतावनी रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले की खबरों के बाद आई है। गौरतलब है कि रियाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 309 लोग घायल हुए हैं। हुती विद्रोहियों ने इस सप्ताह सऊदी अरब के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और तेल प्रतिष्ठानों पर हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। वहीं सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन हुती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है। हमलों के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। उड़ानों की निगरानी करने वाली वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के अनुसार रियाद हवाई अड्डे पर पिछले 24 घंटों में 225 उड़ानें रद्द हुईं। कई अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और स्पेन के दूतावासों ने भी अपने नागरिकों को रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बूढ़ी गंडकी नदी में आई बाढ़ में 5 लोग लापता, 49 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। बाढ़ से विभिन्न स्थानों पर 100 के करीब मकानों, पुलों और अन्य भौतिक संरचनाओं को हुआ भारी नुकसान। नेपाल का प्रमुख पर्व दशहरा हुआ शुरू। पहले दिन आज घर घर में हुई घटस्थापना। पृथ्वी राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात शुरू। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, रूस और यूक्रेन ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए हो गए हैं सहमत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।